0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ

0: हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी 6:05 मिनिटे झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। सुरुवातीला वैशंपायन गुरुजी यांनी पठण केलेलं शनैश्चर स्तोत्र।
2: श्री गणेशाय नमः, श्री शनैश्चराय नमः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता तिष्ठुप् छन्दः श्री शनैश्चर प्रीति

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और

0: देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
3: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में

0: 40 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी ईगूफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिन्दुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव

0: की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, एक साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज रिफॉर्म्स आर नॉट कंपल्शन बट अ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन फॉर गवर्नमेंट। असर्ट्स इट्स पॉलिसीज आर प्रो पीपल, प्रो ग्रोथ एंड प्रो डेवलपमेंट। Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur declaration focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next-generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for

0: कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच AI पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। खाड़ी देशों में नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग मामलों में खाड़ी देशों से निर्वासित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिकी क्षेत्र है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता चाहता है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 11:05 झालेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत गीत बहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। श्रोतेहो, गीत बहार या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। श्रोतेहो, आपण अगदी सहज बोलताना बोलून जातो की हल्ली काळ बदलत चाललाय, कोणाला कोणाची गरजच उरली नाही। हे बोललो तरी बघा ना,

0: श्रोते हो, वनिता मंडळ हा कार्यक्रम आताच आपण ऐकलात. प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: श्रोते हो, सोशल मीडियामुळे जग जास्त जवळ आलं हे खरं, पण मनाचं एकाकीपण वाढलं, संवाद विस्तारला पण आत्मसंवाद हरवला. सोशल मीडियाचा योग्य प्रकारे वापर हाच त्यावरचा उपाय. या संदर्भात मीना अगरखेड यांचं मनोगत ऐकूया. समाज माध्यमाचा विवेकी वापर.
2: निसर्गाजवळ असताना मिळणारी शांतता, थंड वारा, तो क्षण मोकळ्या श्वासात भरून घ्या, आनंदाने जगा. आपण आपल्या खाजगी आयुष्यात काय करतो हे सगळ्यांना सांगायची गरज नसते, कारण तुम्ही एका प्रकारे तुमच्या वैयक्तिक गोष्टींची जाहिरातच करता.
1: अवश्य ऐका मीना आगरखेड यांचं मनोगत वनिता मंडळ कार्यक्रमात सोमवार दिनांक 24 ऑगस्टला दुपारी 12 वाजता अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन एआयआर ऍपवर.
0: श्रोतेहो, आपण ऐकतात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. दुपारचा 1 वाजतोय. ठीक 1 वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारे हिंदी समाचार आम्ही सहक्षेपित करू. 1:05 आपण ऐकू शकाल गीत बहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम. सुरुवातीला ठीक 1 वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील हिंदी समाचार.
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है. इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
4: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है. और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो. गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है.

0: ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 558 किलोहर्ट्स वर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी। प्रसार भारतीच्या वेव्ह्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरही आमचे कार्यक्रम आपण ऐकू शकता। दुपारचे 1:05 आणि 5 सेकंद झालेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत गीत बहार, मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया अजिंठा या चित्रपटातील हिमशिखा अय्यर यांनी गायलेलं नाधो महानोर यांचं हे गीत आहे। संगीतबद्ध केलंय कौशल इनामदार यांनी।

0: लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
3: टू शिप्स विच आर फॉरेन फ्लैग,
4: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं।

0: उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
2: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातु मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
3: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर

0: भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ऍप सहित 558 kHz श्रोते हो आपण ऐकतात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। नादब्रह्म अंतर्गत ऐकूया कर्नाटक शैलीतील संगीत। विद्या हरिकृष्णन यांचं गायन, राग रीती गौडा आणि लतांगी यांना मृदुंगम साथ केली आहे रोहित प्रसाद यांनी, तर व्हायोलिनची साथ आहे विश्वनाथ रामस्वामी यांची। ऐकूया विद्या हरिकृष्णन यांच्या गायनात सुरुवातीला राग रीती गौळा हा कंडचापू तालात निबद्ध आहे।

टीला आगो हिल हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला गो फैशन मराठी सोबे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन अनेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियो शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत

0: या गीताबरोबरच श्रोते हो गीतबहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम समाप्त झाला. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. यानंतर ठीक 6:20 दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या संस्कृत मधल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका सुषमा कुमारी. आदौ मुख्य वार्ताः. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सिलिगुडी नगरे वरिष्ठैः गोरखा नेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्. वार्ताकारस्य पंकज सिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता. सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यून बालकानां कृते क्लोरफेनिरामीन मेलिएट तथा फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चित मात्रा संयोजनानि निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्. अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते. भारतः सोमालिया देशेन सह 22 भारतीय नाविकैः सह विदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति. अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंगशू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति. पश्चिम बंगस्य पर्वतीय क्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीय मन्त्रिणा अमितशाहेन सिलिगुडी नगरे उपवेशनम् एकं कृतम्. अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीय क्षेत्राणां समाह्वानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व IPS अधिकारिणः पंकज सिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थ समित्याः संरचना जाता. समितिरियं केन्द्रीय कार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति. सिलिगुडी नगरस्य सुकार क्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिम बंगस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी अन्ये च गणमान्य जनाः उपस्थिताः आसन्. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादन दण्डितकरणस्य स्वीय दृष्टिकोणे आधारभूत परिवर्तनं विहितमस्ति. साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ILPI इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते. प्रवर्तमान वर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मंचात् संबोधने प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धति सांप्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते. प्रधानमंत्रिणा PLI योजनायाः सफलता अपि चर्चिता यत्र 2,50,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः. 22,00,000 कोटि रूप्यकाणां उत्पादनं क्रयणं 15,00,000 रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः. 14,00,000 वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि.
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है. PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है. सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2,50,000 करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है. 22,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है. 15,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14,00,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है.
1: श्री मोदी भारत देशः अंतर्राष्ट्रीय समुदायस्य आशा विकासस्य च उज्ज्वल स्थानं विद्यते इति अपि प्रतिपादितवान्.
2: दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं. दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों. रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है. अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है, लेकिन ऐसे समय

0: प्यूशेंगशु तैन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति इति वार्ताः।
1: मध्यम लहरी 537.6 मीटर्स तसंच 558 किलोहर्ट्सवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। हे प्रसारण आपण AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता। संध्याकाळचे 6:30 आणि 15 सेकंद झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी कार्यक्रम विविधा।
2: नमस्कार दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस मिट्टी पर हम चलते हैं वही मिट्टी हमारी पहचान है। इसमें किसान की मेहनत है, सैनिक का बलिदान है और हर आम इंसान का सपना है। आज हमारा विषय है ऐसी है मेरे देश की मिट्टी। हम बात करेंगे उन जड़ों की जो हमें अपने देश से जोड़ती हैं, उन मूल्यों की जो हमें इंसान बनाती हैं, आपको आपकी मिट्टी से, आपके देश से और भी करीब ले जाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: आज हमारे साथ हैं राजेंद्र पांडे, जो रज्जन सरल नाम से कविताएं और साहित्य रचनाएं करते रहे हैं। लेखक के रूप में आपकी चंद किताबें भी प्रकाशित हैं, जिनमें श्री राम कथा मानस सरल प्रमुखता से जानी जाती है। आप कई साहित्यिक मंचों से सम्मानित होते रहे हैं। आज के अपने ऐसी है मेरे देश की मिट्टी इस वार्ता में जानते हैं आपके विचार आप ही के शब्दों में।
1: नमस्कार साथियों, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात मित्र, धन और अनाज आदि का संसार में बहुत सम्मान होता है, लेकिन माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी महान बताया गया है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार हम मातृभूमि में रहकर अपना विकास करते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हैं, ऐसी है मेरे देश की मिट्टी। साथियों, मिट्टी सुनने में एक साधारण सा शब्द लगता है, परंतु इसकी सुगंध हम हिंदुस्तानियों के हृदय में बसती है। जीवन की आपाधापी में हम खो गए हैं, लेकिन जब हम कभी थका हुआ महसूस करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें अपनी उस मातृभूमि की याद अवश्य आती है।

पूर्ण होता है। अतः हमारा यह दायित्व बनता है कि हम जिस माटी में खेले कूदे बड़े हुए उसके लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य करें। मेरी मातृभूमि पर आधारित एक कविता की लाइनें, जो कि मेरे क्षेत्र की भाषा बघेली में लिखी गई हैं, उनकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जौन माटी माँ खेलन खायन और लोटी के बड़े भयन, गिरी गिरी के पुन उठन आज हम अपने पैरन खड़े भयन, उन गलियन चौराहन के धोधुर माटी का नमन करी, जौन माटी माँ जन्म हमार भा वह माटी का नमन करी। साथियों, इसका अर्थ ये है कि जिस मिट्टी में हम बचपन गुजारते हैं, खेलते हैं और उस धूल में लिपटकर हम बड़े होते हैं, हम बचपन में बार बार गिरते हैं और उस मिट्टी से फन करके अपने जीवन को मजबूत बनाते हैं, उन गलियों को, उन चौराहों को, उस धूल को और उस मिट्टी को हमारा प्रणाम है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी को हम नमन करते हैं। साथियों, अगर भारत की मिट्टी की बात हो और किसान का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। सुबह सुबह खेतों में काम करता किसान अपने पसीने से इस मिट्टी को सींचता है। उसके लिए मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, उसकी माँ होती है। जब वह मिट्टी को हाथ में लेता है तो उसमें उसे भविष्य की फसल दिखाई देती है, अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। इसीलिए किसानी भले ही आज मुनाफे का व्यवसाय ना हो, परंतु यह उसका अपनी माटी का प्रेम ही है कि वह आजीवन उसी पर निर्भर रहता है और उसी में किसान को सच्चा सुख मिलता है। दोस्तों, यह वही मिट्टी है जिसने हमें ऐसे वीर दिए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीमा पर तैनात जवान जब देश की रक्षा करता है तो उसके दिल में अपने गांव की वही मिट्टी होती है। वह जानता है अगर वह खड़ा है तो इसलिए कि मेरे देश की मिट्टी सुरक्षित रहे। भारत की मिट्टी केवल खेतों और सीमाओं तक सीमित नहीं है। यही मिट्टी हमारी लोक कथाओं में है, हमारे त्योहारों में है, हमारे गीतों और नृत्यों में है। हर राज्य की मिट्टी अलग है पर भावना एक है। कहीं रंगोली है, कहीं अल्पना, कहीं मिट्टी के दिए तो कहीं मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है। मिट्टी जड़ों को सहारा देती है, पानी को रोकती है और पोषक तत्वों का भंडारण करती है। मिट्टी केचुओं, दीमकों और असंख्य सूक्ष्म जीवों का घर है, जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। हम मिट्टी पर और मिट्टी के साथ मिलकर इस संसार का निर्माण करते हैं। साथियों, जब कोई कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखता है तो वह केवल बर्तन नहीं बनाता, वह परंपरा गढ़ता है। उसके हाथों से मिट्टी को पहचान मिलती है और दुनिया जानती है कि यह भारत की मिट्टी है। हमारे देश की मिट्टी अनेक रंगों की है, अनेक भाषाओं की है, अनेक संस्कृतियों की है, फिर भी यह मिट्टी हमें एक सूत्र में बांधती है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। मिट्टी बदलती है पर भारत नहीं बदलता। इसी परिदृश्य पर मैंने एक गीत लिखा है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऐसी

इस मिट्टी ने हमें गढ़ा है, इसने हमें बनाया है। गीतों में त्योहारों में है, मूर्ति और दीपक में है, कला संस्कृति में है, मिट्टी जन जन के रंग रंग में है। हिंदुस्तान की इस मिट्टी को, हिंदुस्तान की इस मिट्टी को हमने शीश झुकाया है।

साथियों, यह मिट्टी सूखा भी सहती है, बाढ़ भी झेलती है, पर हर बार खुद को फिर से तैयार करती है। यही सीख यह मिट्टी हमें देती है कि गिरो, संभलो और फिर से खड़े हो जाओ। मिट्टी जो प्रकृति का भंडार है और सभी पौधों, जानवरों, मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, इसका अस्तित्व अनगिनत काल से है। यहाँ तक कि मनुष्य के इस धरती पर आने से भी बहुत पहले से मिट्टी का अस्तित्व मिलता है। अनगिनत पौधों, जानवरों और अंततः मनुष्य ने पृथ्वी को आबाद किया और मिट्टी ने बिना किसी मानवीय सहायता के उन सभी का भरण पोषण किया है। साथियों, यह मिट्टी हमारी धरोहर है, पर साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी। अगर हम इस मिट्टी को प्रदूषित करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगी। आइए संकल्प लें, मिट्टी को स्वच्छ रखें, पेड़ लगाएं, प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि मिट्टी बचेगी तभी देश बचेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी मिट्टी का बहुत महत्व रहा है। कई सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, एवं भगवान शिव की पूजा में तो इस पवित्र मिट्टी से शिवलिंग का भी निर्माण किया जाता है। जब हम कहते हैं ऐसी है मेरे देश की मिट्टी, तो यह गर्व का वाक्य है। यह मिट्टी मुझे मेरा नाम देती है, मेरी पहचान देती है और जीने का उद्देश्य देती है। तो आइए इस मिट्टी को सिर्फ पैरों तले न रखें, बल्कि दिल में बसाएं। इसी भावना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शेतकरी बंधु।

0: आकाशवाणी मुंबई गायक वृंदाने गायलेल्या या गीताबरोबरच श्रोते हो भावधारा हा सुगम संगीताचा कार्यक्रम इथेच समाप्त झाला. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून, तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरून. श्रोते हो, यानंतर ठीक 8:45 समाचार संध्या हे हिंदीतलं बातमीपत्र, 9 News@9 हे इंग्रजी बातमीपत्र, 9:15 स्पॉटलाईट, 9:30 राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका आणि रात्री 10 अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम. यामध्ये कलाकार श्रेयस नारायण यांचं कर्नाटक शैलीतील गायन हे सर्व कार्यक्रम आकाशवाणी.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया. गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए. भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी. ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया. ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर. और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता. अब समाचार

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।

0: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ. असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारूभोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ. अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी

0: जीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कलाहंडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal.

श्रोताओं नमस्कार। माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान जिज्ञासा से समाधान तक नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया, और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज

0: मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंट वार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियाँ, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरी दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायंस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों को उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग एक बंगाल रिनायंस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय ये रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सी वी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जी डी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रामन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग।
2: तो वो रामन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामन के प्रभाव के आधारित

0: भी है सब कुछ। प्रोफेसर मांडे, क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है, तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
1: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमाइटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
0: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
1: मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
0: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं मटेरियल साइंस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, विकास की ये दौड़, ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, एवं आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है, ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया, उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को, और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा, इनके लिए मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
2: अपनी भाषा में इसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं, ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात होती है। प्रोसेसिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
2: एक प्रश्न सर और

0: फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है,
1: जी
0: तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहां पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे।
1: अच्छा
0: तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहां पे,
1: जी जी
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें।
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पे सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स की पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
2: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणियों का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है बहुत मुश्किल है, और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
2: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
2: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हेमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के।

0: ऊपर जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे है?
1: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है। तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं, जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। अब वो चेंज अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
0: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
0: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
0: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
0: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
0: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
0: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं, वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
0: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है।

0: क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है, इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
1: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
0: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
1: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
0: बिल्कुल, तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
2: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित

0: सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे, प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट by Sri Shreyas Narayanan. Sri Shreyas Narayanan is a top-grade Carnatic vocalist of Akashvani, known for his powerful voice, musical depth, and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training

0: प्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कामाक्षीम कल्याणी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तु स्वामी दीक्षितर इन द रागा कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is Taye Tribura Sundari. In the rag, Shuddha Saveri, set to Khandachapu Thaal, composed by Periyasami Thooran.

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विथ दाशरथि कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by श्री ए बालकृष्ण कम्मत and on the घटम by श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S.R. Rajashri on the violin, Shri A. Balakrishna Kammath on the mridangam, and Shri Vaikim N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, "For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interests and reciprocity."
3: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be a fair degree of

0: श्रोतो नमस्कार. आपण ऐकत आहात ए आय आर मराठी ही DTH उपग्रहवाहिनी. रात्रीचे 2 वाजलेत. कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत हिंदी कार्यक्रम विविधा.
1: नमस्कार दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है. दोस्तों, जिस मिट्टी पर हम चलते हैं वही मिट्टी हमारी पहचान है. इसमें किसान की मेहनत है, सैनिक का बलिदान है और हर आम इंसान का सपना है. आज हमारा विषय है ऐसी है मेरे देश की मिट्टी. हम बात करेंगे उन जड़ों की जो हमें अपने देश से जोड़ती हैं, उन मूल्यों की जो हमें इंसान बनाती हैं, आपको आपकी मिट्टी से, आपके देश से और भी करीब ले जाने वाली है. तो बने रहिए हमारे साथ.

0: आज हमारे साथ हैं राजेंद्र पांडे, जो रज्जन सरल नाम से कविताएं और साहित्य रचनाएं करते रहे हैं। लेखक के रूप में आपकी चंद किताबें भी प्रकाशित हैं, जिनमें श्री राम कथा मानस सरल प्रमुखता से जानी जाती है। आप कई साहित्यिक मंचों से सम्मानित होते रहे हैं। आज के अपने ऐसी है मेरे देश की मिट्टी इस वार्ता में जानते हैं आपके विचार आप ही के शब्दों में।
1: नमस्कार साथियों, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। अर्थात मित्र, धन और अनाज आदि का संसार में बहुत सम्मान होता है, लेकिन माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी महान बताया गया है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार हम मातृभूमि में रहकर अपना विकास करते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हैं, ऐसी है मेरे देश की मिट्टी। साथियों, मिट्टी सुनने में एक साधारण सा शब्द लगता है, परंतु इसकी सुगंध हम हिंदुस्तानियों के हृदय में बसती है। जीवन की आपाधापी में हम खो गए हैं, लेकिन जब हम कभी थका हुआ महसूस करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें अपनी उस मातृभूमि की याद अवश्य आती है। जब बात मेरे देश की मिट्टी की होती है, तो यह केवल मिट्टी नहीं रहती, यह इतिहास बन जाती है, यह संस्कार बन जाती है, यह बलिदान, श्रम, प्रेम और आत्मसम्मान की पहचान बन जाती है।

हम सब कहते हैं हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस मिट्टी ने हमें क्या क्या दिया है? यह मिट्टी हमें अन्न देती है, यह मिट्टी हमारे घरों की नींव बनती है, और अंत में यही मिट्टी हमें अपने में समेट लेती है। हमारा जीवन मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में ही पूर्ण होता है। अतः हमारा यह दायित्व बनता है कि हम जिस माटी में खेले कूदे बड़े हुए, उसके लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य करें। मेरी मातृभूमि पर आधारित एक कविता की लाइनें, जो कि मेरे क्षेत्र की भाषा बघेली में लिखी गई हैं, उनकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जौन माटी माँ खेलन खायन और लोटी के बड़े भयन, गिरी गिरी के पुन उठन आज हम अपने पैरन खड़े भयन। उन गलियन चौराहन के धोधुर माटी का नमन करी, जौन माटी माँ जन्म हमार भा वह माटी का नमन करी। साथियों, इसका अर्थ ये है कि जिस मिट्टी में हम बचपन गुजारते हैं, खेलते हैं और उस धूल में लिपट कर हम बड़े होते हैं, हम बचपन में बार बार गिरते हैं और उस मिट्टी से फन करके अपने जीवन को मजबूत बनाते हैं। उन गलियों को, उन चौराहों को, उस धूल को और उस मिट्टी को हमारा प्रणाम है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी को हम नमन करते हैं। साथियों, अगर भारत की मिट्टी की बात हो और किसान का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। सुबह सुबह खेतों में काम करता किसान अपने पसीने से इस मिट्टी को सींचता है। उसके लिए मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, उसकी माँ होती है। जब वह मिट्टी को हाथ में लेता है तो उसमें उसे भविष्य की फसल दिखाई देती है, अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। इसीलिए किसानी भले ही आज मुनाफे का व्यवसाय ना हो, परंतु यह उसका अपनी माटी का प्रेम ही है कि वह आजीवन उसी पर निर्भर रहता है और उसी में किसान को सच्चा सुख मिलता है। दोस्तों, यह वही मिट्टी है जिसने हमें ऐसे वीर दिए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीमा पर तैनात जवान जब देश की रक्षा करता है तो उसके दिल में अपने गांव की वही मिट्टी होती है। वह जानता है अगर वह खड़ा है तो इसलिए कि मेरे देश की मिट्टी सुरक्षित रहे। भारत की मिट्टी केवल खेतों और सीमाओं तक सीमित नहीं है। यही मिट्टी हमारी लोक कथाओं में है, हमारे त्योहारों में है, हमारे गीतों और नृत्यों में है। हर राज्य की मिट्टी अलग है, पर भावना एक है। कहीं रंगोली है, कहीं अल्पना, कहीं मिट्टी के दिए तो कहीं मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है। मिट्टी जड़ों को सहारा देती है, पानी को रोकती है और पोषक तत्वों का भंडारण करती है। मिट्टी केचुओं, दीमकों और असंख्य सूक्ष्म जीवों का घर है, जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। हम मिट्टी पर और मिट्टी के साथ मिलकर इस संसार का निर्माण करते हैं। साथियों, जब कोई कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखता है तो वह केवल बर्तन नहीं बनाता, वह परंपरा गढ़ता है। उसके हाथों से मिट्टी को पहचान मिलती है और दुनिया जानती है कि यह भारत की मिट्टी है। हमारे देश की मिट्टी अनेक रंगों की है, अनेक भाषाओं की है, अनेक संस्कृतियों की है, फिर भी यह मिट्टी हमें एक सूत्र में बांधती है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। मिट्टी बदलती है, पर भारत नहीं बदलता। इसी परिदृश्य पर मैंने एक गीत लिखा है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऐसी है मेरे देश की मिट्टी, श्रम बलिदान समाया है, इस मिट्टी ने हमें गढ़ा है, इसने हमें बनाया है। ऐसी

से है। बन कर मिटना, मिट कर बनना, इसने हमें सिखाया है। इस मिट्टी ने हमें गढ़ा है, इसने हम...

है। सिर्फ जमीन नहीं ये मिट्टी, हम सब की ये माता है, यही भविष्य युवा पीढ़ी का इससे अद्भुत नाता है। वीर

0: है।
1: गीतों में त्योहारों में है, मूर्ति और दीपक में है, कला संस्कृति में है, मिट्टी जन जन के रंग रंग में है। हिंदुस्तान की इस मिट्टी को, हिंदुस्तान की इस मिट्टी को हमने शीश झुकाया है, इस मिट्टी ने हमें गढ़ा है, इसने

साथियों, यह मिट्टी सूखा भी सहती है, बाढ़ भी झेलती है, पर हर बार खुद को फिर से तैयार करती है। यही सीख यह मिट्टी हमें देती है कि गिरो, संभलो और फिर से खड़े हो जाओ। मिट्टी जो प्रकृति का भंडार है और सभी पौधों, जानवरों, मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, इसका अस्तित्व अनगिनत काल से है। यहाँ तक कि मनुष्य के इस धरती पर आने से भी बहुत पहले से मिट्टी का अस्तित्व मिलता है। अनगिनत पौधों, जानवरों और अंततः मनुष्य ने पृथ्वी को आबाद किया और मिट्टी ने बिना किसी मानवीय सहायता के उन सभी का भरण पोषण किया है। साथियों, यह मिट्टी हमारी धरोहर है, पर साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी। अगर हम इस मिट्टी को प्रदूषित करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए संकल्प लें, मिट्टी को स्वच्छ रखें, पेड़ लगाएं, प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि मिट्टी बचेगी तभी देश बचेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी मिट्टी का बहुत महत्व रहा है। कई सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, एवं भगवान शिव की पूजा में तो इस पवित्र मिट्टी से शिवलिंग का भी निर्माण किया जाता है। जब हम कहते हैं ऐसी है मेरे देश की मिट्टी, तो यह गर्व का वाक्य है। यह मिट्टी मुझे मेरा नाम देती है, मेरी पहचान देती है और जीने का उद्देश्य देती है। तो आइए इस मिट्टी को सिर्फ पैरों तले न रखें, बल्कि दिल में बसाएं। इसी भावना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति पर आधारित वार्ता, ऐसी है मेरे देश की मिट्टी। आज के इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू थे रचनाकार राजेंद्र पांडे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजू कुमार भारती।

0: சுண்டி வச்ச
1: चला हटूश पान बाई हटूश कळायचं का दमता लगेच बाई तुम्ही.